0: कि ये नाम है उस हैरत अंगेज छाते और धुरंधर चोर का जिसके सनसनीखेज
1: यार ये सनसनीखेज मैं कितनी बार बोलूंगा यार, घर में बीवी पूछती है खाना कैसा बना तो मुंह से निकलता है सनसनीखेज।
2: हमारी ज्वेलरी तो कहीं नजर नहीं आ रही।
3: आज तक घर के सामान आया था, निकाल सकते हो तो निकाल लो।
2: कल पीछे